पार्थिवास एफएम समय सूचना। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले बिहानको 9 बजे।

0: हरेक शुक्रबार विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा गर्भवती जाँच गर्न प्रभास मेडिकल चैनपुर छ 0 पोइन्ट।
1: पुरानो ग्यास्ट्रिक अल्सर हर्सा दिशाबाट रगत बग्ने छाला सम्बन्धी रोग चर्म रोग चिनी रोग टन्सिल बाथ हार्जोनी नसा

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो १ बज्यो।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो 2 बज्यो।